कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों 107 FM रेनबो पर आरजे अंकित आपके साथ। और सुबह के बज चुके हैं 10:02। मैं हूं आपके साथ हाजिर लेकर अपना और आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। रहने वाला हूं 11 बजे तक आपके साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाया हूं धमाकेदार ट्रैक्स आप लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ ट्रैक से ही धमाका नहीं दोस्तों, करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे बात जहां पर आप भी कुछ जानेंगे और मैं भी अपनी जो नॉलेज है बढ़ाऊंगा। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं अत्यधिक व्यायाम और दवाओं का सेवन हृदय पर डाल रहा है दुष्प्रभाव। जहां दोस्तों आज पूरे कार्यक्रम में करूंगा इसी पर चर्चा, इसी पर बातें, और बताऊंगा एक्चुअली में हो क्या रहा है, हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। तो इस बारे में बातें रहेंगी, चर्चा रहेंगी, लेकिन कैसे हम अपने प्यारे प्यारे गीत भूल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये शो आपके लिए और आपके लिए ये पहला ट्रैक रहा।

फिल्म काई पोचे से दोस्तों मिली नायर और अमित त्रिवेदी लेकर आए थे ट्रैक। कंपोजिशन अमित त्रिवेदी की और स्वानंद किरकिरे के थे बोल। भारत के शहरी युवाओं में तेजी से बॉडी बनाने की बढ़ती चाहत स्टेरॉयड प्री वर्कआउट पाउडर और अनियंत्रित सप्लीमेंट्स के खतरनाक दुरुपयोग को बढ़ावा दे रही है। हृदय रोग विशेषज्ञ स्वस्थ दिखने वाले युवा में भी धमनिया में रुकावट, दिल का दौरा पड़ने और अचानक हृदय संबंधी समस्याओं के बढ़ते जोखिम की चेतावनी दे रहे हैं।

फिल्म क्रिश 3 से दोस्तों आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर, मोनाली ठाकुर और बॉब की आवाज में ट्रैक राजेश रोशन का, कंपोजिशन शमीर अंजान के थे बोल। 10:14 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप। और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें बता दूं कि आज मैं नॉनस्टॉप गपशप में बात कर रहा हूं, अत्यधिक व्यायाम और दवाओं का सेवन हृदय पर डाल रहा है दुष्प्रभाव। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीज के अध्यक्ष एवं हृदय रोग सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला का कहना है कि सोशल मीडिया पर फिटनेस संस्कृति और ऑनलाइन सप्लीमेंट मार्केटिंग से प्रेरित ये प्रवृत्ति जिम जाने वाले कई युवाओं को ऐसे उत्पादों एवं व्यायाम पद्धतियों की ओर धकेल रही है जो हृदय पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकती है। चंदोला ने बताया कि हम तेजी से ऐसे युवाओं को देख रहे हैं जिनमें दिल की धड़कन का तेज होना, असामान्य हृदय गति, उच्च रक्तचाप और यहां तक कि अनियंत्रित सप्लीमेंट या स्टेरॉयड के उपयोग से जुड़े हृदय का संचारात्मक परिवर्तनों का मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस गर्मी में कश्मीर घूमना जाना चाहते हैं तो अगला ट्रैक आपके लिए पूरा फिट बैठ।

दोस्तों सुन रहे थे आप चेन्नई एक्सप्रेस से एक ट्रैक सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में, विशाल शेखर का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। दोस्तों डॉक्टर राहुल चंदुला और कहते हैं कि चिंता की बात व्यायाम नहीं है, नियमित व्यायाम हृदय की रक्षा करता है। खतरा तब उत्पन्न होता है जब लोग अत्याधिक व्यायाम के साथ उत्तेजक पदार्थ एवं स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं और शरीर की बनावट को लेकर अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। फिटनेस के शौकीन युवाओं और शौकिया बॉडी बिल्डर में अचानक बेहोशी एवं दिल का दौरा पड़ने से मौत के मामले न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बन गए हैं। एम्स के कार्डियोथेरेसिस और वास्कुलर सर्जन डॉक्टर मयंक यादव ने बताया कि कई युवा गलत धारणा रखते हैं कि ऑनलाइन बेचे जाने वाले या इन्फ्लुएंसरों द्वारा प्रचारित सप्लीमेंट्स चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित हैं। और दोस्तों आज है संडे का दिन, पार्टी करने का दिन, तो चलिए बढ़ते हैं एक पार्टी वाले ट्रैक की तरफ आपके लिए।

फिल्म गोरी तेरे प्यार में से दोस्तों सुन रहे थे ये ट्रैक मीका सिंह, ममता शर्मा, श्रुति पाठक की आवाज में विशा शेखर ने सजाया था संगीत से। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

0: फिल्म शूट दिस यू रोमांस से दोस्तों जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाज़ें सुन रहे थे ट्रैक सचिन जिगर का मोशन जयदेव सहानी के बोल। 10:31 AM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ और शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपकी अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर आरजे अंकित आपके साथ। इस कार्यक्रम में मैं रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ नॉन स्टॉप गपशप में। लेकर आया हूं टॉपिक और कर रहा हूं उसी टॉपिक पर बात और आज मैं कर रहा हूं अत्यधिक व्यायाम और दवाओं का सेवन हृदय पर डाल रहा है दुष्प्रभाव, इस बारे में कर रहा हूं चर्चा आप लोगों से। सुना रहा हूं बैक टू बैक बेहतरीन ट्रैक।
1: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

फिल्म आर राजकुमार से अरिजीत सिंह और पलक मुछल लेकर आए थे ये ट्रैक। प्रीतम का कंपोजिशन नीलेश मिश्रा, सोनंद किरकिरे के थे बोल। और दोस्तों डॉक्टर राहुल चंदोला कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई उत्पाद ई कॉमर्स मंच पर उपलब्ध है या फिटनेस इन्फ्लुएंसरों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हानि रहित हो ही होगा। ये धारणा खतरनाक है। यादव ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती फिटनेस अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया से प्रेरित फिटनेस संस्कृति इस प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया जैसे मंच युवाओं को लक्षित करके बनाए गए वीडियो सप्लीमेंट प्रमोशन और अत्यधिक फिटनेस चुनौतियों से भरे पड़े हैं।

दोस्तों सुन रहे थे आप दो बैक टू बैक ट्रैक। इसके पहले आपने सुना था फिल्म टू स्टेट्स से के मोहन और यशिता शर्मा की आवाज में, और अभी आप सुन रहे थे बर्फी से पापोन और सुंदी चौहान की आवाज में। संगे से सजाया था प्रीतम ने, बोल से सवरा था नीलेश ने। हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि एनाबेलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड के इस्तेमाल से हृदय के धड़कनों का क्षमता में कमी, हृदय भेदी का मोटा होना और दिल की बनावट एवं कार्य प्रणाली में नुकसानदायक बदलाव हो सकती है। अध्ययन के मुताबिक इसी तरह कई आधुनिक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन की बहुत अधिक मात्रा उत्तेजक व प्रदर्शन बढ़ाने वाले यौगिकों का मिश्रण हृदय गति एवं रक्तचाप को बढ़ा सकता है और संवेदनशील व्यक्तियों में खतरनाक हृदय संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। डॉक्टर चंदोला ने बताया कि एक और गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो है आक्रामक व्यायाम क्रिया या अत्यधिक फिटनेस दिनचर्या शुरू करने से पहले हृदय स्वास्थ्य की उचित जांच का अभाव है। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ दोस्तों।

फिल्म कॉकटेल से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक मिश पूजा नेहा कक्कर नकश अजीज की आवाज में, संगीत से सजाया था प्रीतम ने और बोल से सवारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। दोस्तों देखते ही देखते जो है हम पहुंच चुके हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म जब तक है जान से। दोस्तों आप सुन रहे थे राघव माथुर शिल्पा राव की आवाज में ट्रैक ए आर रहमान का कंपोजिशन गुलजार के बोल। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के लास्ट ट्रैक की तरफ। इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी संडे। सुनते रहिए साथ रहे 107 FM रेनबो और इंजॉय करते रहिए।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन का तड़का, 3:03 और 32 सेकंड। रंगीन पर्दे की दुनिया से चमकते ख्वाबों की गली तक खबरों का मसालेदार जायका लाए हम आपके लिए तड़का। गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल में मिलेगा तीन का तड़का। संचित है आपके साथ, कार्यक्रम है तीन का तड़का, 3:03 और पहला गीत सोनू निगम की आवाज में, दिल तो बच्चा है जी, कुमार ने लिखा और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

ले चलते हैं आपको स्टारडम की दुनिया में। कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:08। आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ और शुरू करते हैं जिस चंक के साथ, वो है बॉलीवुड न्यूज का पहला सेगमेंट वेलकम टू द जंगल की रिलीज को लेकर नई चर्चा। 17 मई से पहले जो भी बॉलीवुड में घट रही जो बातें हैं वो आप तीन का तड़का के दौरान सुनते हैं। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वेलकम टू द जंगल एक बार फिर चर्चा में रही। फिल्म के प्रमोशनल अपडेट्स और मल्टी स्टार कास्ट को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ी। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ बड़े कलाकारों की मौजूदगी इसे खास बना रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज रणनीति और प्रचार अभिनय अभियान को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय बाद बड़े स्टार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म आने से जो है ट्रेंड विशेषज्ञ इसे बॉक्स ऑफिस के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बात करते हैं रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सफलता चर्चे में है। मई 2026 के दूसरे सप्ताह में राजा शिवाजी की बॉक्स ऑफिस सफलता लगातार चर्चा का विषय बनी रही। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ट्रेंड रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म ने मराठी सिनेमा का साथ हिंदी दर्शकों में भी रुचि लगाई। रितेश देशमुख के निर्देशन और ऐतिहासिक प्रस्तुति की सराहना की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐतिहासिक फिल्मों के प्रति दर्शकों की जो बढ़ती रुचि है, भविष्य में बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा दोनों में ऐसे विषयों को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम है तीन का तड़का और आगे बढ़ेंगे हाउसफुल 5 से एक ट्रैक, नीरज श्रीधर और श्रुति दासमन की आवाज। चलिए सुनते हैं इस गीत को। कार्यक्रम है तीन का तड़का और 3:11। आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर तीन का तड़का। आगे बढ़ते हैं करण जौहर के अंतर्राष्ट्रीय फैशन मंच पर चर्चा। 10 से 17 मई के बीच फिल्म मेकर करण जौहर अपने अंतर्राष्ट्रीय फैशन अपियरेंस को लेकर खबरों में छाए रहे। भारतीय फैशन और बॉलीवुड को वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना गया। मनोरंजन जगत में ये चर्चा रही कि भारतीय सिनेमा से जुड़े लोग जो हैं अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि फैशन और वैश्विक पॉप कल्चर का भी हिस्सा बनेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बॉलीवुड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी और भारतीय डिजाइनर्स को भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओटीटी रिलीज का एक बढ़ता प्रभाव तो देखा गया। 17 मई से पहले सप्ताह में कई हिंदी फिल्में और वेब कंटेंट जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में रहे। बड़े सितारों की फिल्मों के साथ साथ मिड बजट कंटेंट को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को देखने मिल रहे हैं। इंडस्ट्री जो है विश्लेषण के अनुसार माना जा रहा है कि अब जो है केवल थिएटर्स रिलीज ही सफलता का पैमाना नहीं रह गया है। ओटीटी पर मजबूत जो विजुअल चिप फिल्मों को लंबी उम्र दे रही है, इस बदलाव ने फिल्म निर्माताओं को नई रणनीतियों पर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसमें थिएटर और डिजिटल रिलीज का संतुलन प्रमुख हो रहा है। फिलहाल कुछ कुछ लोचा है से जुबिन नौटियाल की आवाज है, सुनते हैं इस गीत को। कार्यक्रम है तीन का तड़का।

और अब 3:21 आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है तीन का तड़का और मैं हूँ आपके साथ संचिता एक वेदर अलर्ट के साथ। हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो आज दोपहर 1:45 से शुरू होकर अगले 2-3 घंटों के दौरान बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। आज दोपहर 2:10 पर अगले 2-3 घंटे के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना जताई गई है। दोपहर 2:23 पर अगले 2-3 घंटे के दौरान मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। कालिंपोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। यह संभावना आज दोपहर 2:39 तक शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम है तीन का तड़का। आगे बढ़ेंगे एक और ट्रैक के साथ। फिल्म का नाम क्रिएचर 3D, अरिजीत सिंह की आवाज, टोनी कक्कड़ ने लिखा और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: बॉलीवुड न्यूज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी देओल की नई फिल्मों को लेकर उत्सुकता, मई 2026 के इस सप्ताह में बॉबी देओल की आगामी परियोजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने अभिनय से नई पहचान बनाई है और नकारात्मक व गंभीर भूमिकाओं में दर्शकों को प्रभावित किया है। ट्रेड सर्कल में ये माना जा रहा है कि

दर्शकों को वो प्रभावित करने में सफल हुए हैं और बॉबी का दूसरा करियर चरण पहले से अधिक मजबूत साबित हो सकता है। उनके आने वाली फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर भी उत्साह देखा जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि सही स्क्रिप्ट चयन ने उनके करियर को नई दिशा दी है। बॉलीवुड संगीत में एक नए प्रयोगों का दौर चल रहा है काफी दिनों से। 2026 के दौरान मई के दौरान रिलीज हुई कई फिल्मों के गीत ने संकेत दिया कि बॉलीवुड संगीत तेजी से बदल रहा है। अब केवल पारंपरिक जो रोमांटिक गानों की जगह फ्यूजन, इंडी म्यूजिक या फिर रीमिक्स ट्रेंड का भी एक दौर चल रहा है। संगीत कंपनियां जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नए गानों का एक आक्रामक प्रचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि संगीत अब फिल्म प्रमोशन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। किसी फिल्म का गाना वायरल होने से फिल्म की जो शुरुआती एडवर्टीजमेंट या लोकप्रियता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे आमिर खान की जो नई फिल्म परियोजना पर भी चर्चे हो रहे हैं। 17 मई से पहले ऐसा सुना गया, यानी आज से पहले, कि 2026 के दौरान आमिर खान की नई फिल्म परियोजना को लेकर बॉलीवुड गलियारों में चर्चे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता एक ऐसी कहानी पर काम कर रहे हैं जिसमें भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को प्रमुखता दी जाएगी। आमिर लंबे समय से अलग और सार्थक विषय हैं उन सब्जेक्ट्स वाली फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं, इसलिए दर्शकों की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ रही है। फिल्म ट्रेड जो विश्लेषकों का माना जा रहा है, इनका मानना है कि आमिर की वापसी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को नई ऊर्जा दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब कंटेंट आधारित फिल्मों की मांग बढ़ रही है। और बस कल ही उन्हें देखा गया अपनी पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी के घर पर, यानी कि आप जानते हैं ना, द मेकर ऑफ लापता लेडीज। तो चलिए श्रेया घोषाल की आवाज में इसी फिल्म से एक गीत हो जाए। स्वानंद किरकिरे ने लिखा और राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है 3 का तड़का संचिता के साथ, 3:31।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

37 मिनट। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस के बारे में। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल जिसका उद्देश्य युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्रदान करना। ये योजना के तहत इंटर्न को प्रतिमाह 9,000 की वित्तीय सहायता और 6,000 का एकमुश्त अनुदान यानी कि ज्वाइनिंग ग्रांट दिया जाता है। मासिक स्टाइपेंड अगर कहें वही 9,000 प्रतिमाह, सरकार द्वारा 5,000 और कंपनी द्वारा सीएसआर फंड से 4,000, एकमुश्त सहायता आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। 12 महीने की इंटर्नशिप जिसमें से कम आधा समय वास्तविक कार्यस्थल पर बिताना अनिवार्य है, यह है अवधि। बीमा कवरेज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवरेज मिल सकता है। इंटर्नशिप पूरी होने पर कंपनियों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा। आयु की सीमा जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की जो आयु है वो 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास, आईटीआई सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, स्नातक, बीए, बीकॉम या बीएससी छात्र की जो है पात्र होने चाहिए। शिक्षा योग्यता होनी चाहिए और आवेदक पूर्णकालिक यानी कि रेगुलर रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं होना चाहिए। ओपन या डिस्टेंस लर्निंग वाले छात्र भी पात्र हो सकते हैं। पारिवारिक आय जो है वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन है जो पात्र नहीं होंगे, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस, सीए, सीएस या पीएचडी अगर आप धारक हैं तो आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो तो भी वो आवेदन नहीं कर सकता। आवेदन आप माई स्कीम पोर्टल के माध्यम से या आधिकारिक कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन के लिए कोई शुल्क देने नहीं पड़ते। पीएम इंटर्नशिप योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जो है जिससे देश के युवाओं को बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हो सकता है। ये कार्यक्रम सोशल विकास और रोजगार के लिए बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शीर्ष जो 500 कंपनीज में इंटर्नशिप के माध्यम से अकादमिक शिक्षा या फिर वास्तविक दुनिया के अनुभव के बीच अंतर को समाप्त करना है। ये पहल न केवल प्रशिक्षुओं उनके क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी बल्कि उनके जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी सफल करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और अंतर्दृष्टि से भी सुसज्जित करेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस का उद्देश्य युवाओं की रोजगार योग्यता को बढ़ाना। इसके लिए उन्हें संरचित एवं वास्तविक उद्योग आधारित अनुभव होना या प्रदान किया जा रहा है। पीएमआईएस के अंतर्गत शीर्ष कंपनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा और उद्योग के बीच मौजूद जो कौशल है, जो टेक्निक्स हैं, अंतर को कम करना है। इंटर्नशिप तक सुलभता को बढ़ाना ताकि ये केवल प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरी केंद्रों तक सीमित ना रहे। इंटर्नशिप के दौरान निम्न आय वर्ग जो है यानी कि जो नीचे

0: आय वर्ग के जो लोग हैं, युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी समर्थन करना भी इसका उद्देश्य है। उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के अनुरूप कुशल कार्यबल का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर। कार्यक्रम है तीन का तड़का और हम आगे बढ़ेंगे जिस न्यूज चंक के साथ, वो है दीपिका पादुकोण की जो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता फिर से चर्चे में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लोकप्रियता को लेकर खबरों में बनी हुई है। विदेशी ब्रांड्स और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उनकी भागीदारी ने बॉलीवुड की वैश्विक पहुंच को मजबूत किया है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि दीपिका उन भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने हॉलीवुड और वैश्विक फैशन जगत में मजबूत पहचान बनाई है। सोशल मीडिया पर उनके प्रोजेक्ट्स और सार्वजनिक उपस्थितियों को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह देखा गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी लोकप्रियता भारत से बाहर की तेजी से फैल रही है। बॉलीवुड में महिला केंद्रित जो कहानियां हैं उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। कई निर्माता ऐसी फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं जिनमें महिला पात्र केवल सहायक भूमिका तक सीमित ना होकर कहानी का मुख्य आधार हो। उदाहरण के तौर पर हाल के वर्षों में मजबूत महिला किरदारों वाली फिल्मों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि दर्शकों की जो बदलती पसंद है ने बॉलीवुड को एक इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और इससे अभिनेत्रियों को भी अधिक चुनौतीपूर्ण प्रभावशाली भूमिकाएं मिलने के चांसेस हैं। मई 2026 के इस सप्ताह में रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ है। ट्रेंड जो है ट्रेड सर्कल के अनुसार अभिनेता अलग अलग शैली की फिल्मों में नजर आ सकते हैं जिसमें बड़े बजट की एक्शन और ड्रामा परियोजनाएं भी शामिल हैं। रणबीर की पिछली फिल्मों की जो सफलता के बाद निर्माताओं को उनके से काफी उम्मीदें हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनके नए लुक और संभावित प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा करते दिख रहे हैं और इससे साफ है कि वो आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में एक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे सिंघम रिटर्न्स के इस ट्रैक से। अरिजीत सिंह की आवाज संदीप नाथ ने लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया। 3:52 कार्यक्रम तीन का तड़का संजता के साथ।

जिस कार्यक्रम के साथ आप बने हुए थे वो है तीन का तड़का। बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों का दबदबा अभी भी जारी है। 2026 के दौरान फिल्म उद्योग में बड़े बजट की फिल्मों को लेकर चर्चा बनी हुई है। निर्माता अब ऐसे फिल्मों पर अधिक निवेश कर रहे हैं जिनमें भव्य सेट, बीएफएक्स और मल्टीस्टार कास्ट हो। ट्रेंड विशेषज्ञों का मानना है कि दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए बड़े विजुअल अनुभव वाली फिल्मों पर जोर देना होगा। इसी के साथ तीन का तड़का यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलते हैं लेकर 5:20 पर एफएम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स, और जाते जाते एक दिन फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। अगले कार्यक्रम के साथ रहिए और सुनते रहिए इस गीत को।

मई की खुशबू संग आई है यादों की बारात। सस्ते हैं ना फिर पर्दे पुराने, जगती है बीती हर बात। वो फिल्में जो मई में आई, बनकर तैयार हुई और बन गई दिल की धड़कन। किस्से गाने संवाद उनके आज भी देते हैं स्पंदन। छुपे हुए कुछ राज भी होंगे, कुछ अनसुनी सी बात भी होगी, पर ट्रिविया के संग लौटेगी वो सुनहरी सी रातें। तो आइए चले सफर पर बीते दिनों में, बीते लम्हों के साथ, जहां सिनेमा की दुनिया में बसती है यादों की बारात। और शुरू करते हैं इस गीत से।

याद की बारात। वास्तविक सबसे पहले संगीत जरूर बना, फिर कहानियां भी बनी, फिर कोई निर्माता निर्देशक आया और फिर फिल्म बनी। और ये फिल्में जब हमेशा हमारे दिल में उतर जाए, पुरानी हो जाए, लेकिन फिर भी उन कहानियों को हम याद करते फिरे, या फिर वो गीत जो कभी हम गाते थे उसको याद करते फिरे, तो फिर कहीं ना कहीं वो यादों के बारात में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे अस्तित्व फिल्म से सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति को, लेकिन आज की कहानी कुछ और है। चलिए 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 की बात करते हैं, 13 मई 2016 में एक फिल्म आई थी। कौन सी फिल्म? हाँ, उस फिल्म के बारे में तो बात करेंगे, और वो गीत जो उस फिल्म में है उनके बारे में भी बात करेंगे। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात, आपके साथ हूं मैं संचिता। इस वक्त 7:11:06। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानी। एक दौर था ना जब बायोपिक बहुत बन रहे थे, उसी दौरान भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन से प्रेरित एक फिल्म बनी थी। निर्माता और लेखकों ने उनकी क्रिकेट उपलब्धियों, निजी जीवन, यहां तक कि कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं, मैच फिक्सिंग विवाद को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत किया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री शैली में नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक इमोशनल ड्रामा के रूप में इसे विकसित किया गया। कई घटनाओं को वास्तविकता के करीब रखते हुए कुछ सिनेमाई बदलाव भी किए गए। दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि फिल्म में विवादित जो अध्यायों को किस तरह से दिखाया जाएगा। बिल्कुल यही

कारण है। यही कारण था कि रिलीज से पहले ही फिल्म चर्चे में आ गई थी और इमरान हाशमी की वो तैयारियां, फिल्म के लिए क्रिकेट की विशेष ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, कई महीनों तक मोहम्मद असरुद्दीन के पुराने मैचों की रिकॉर्डिंग देखी ताकि उनके जो बैटिंग स्टाइल या फिर बॉडी लैंग्वेज को समझ सके। रिस्टी बैटिंग टेक्निक क्रिकेट जगत में बेहद प्रसिद्ध रही और उसे स्क्रीन पर दोहराना आसान नहीं था। इमरान हाशमी ने क्रिकेट कोच की मदद से अभ्यास किया और नेट सेशंस में हिस्सा भी लिया। उन्होंने मैदान पर चलने, बल्ला पकड़ने, शॉट खेलने तक के अंदाज पर बहुत मेहनत की। यही वजह थी कि कई दशकों ने उनके अभिनय को विश्वसनीय, प्रभावशाली माना। और गाने की तो क्या ही कहें, अरमान मलिक की आवाज हो, रश्मि विराग ने लिखा हो और अमल मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, नाम है अजहर। और सुनेंगे इसी फिल्म से एक बहुत ही बेहतरीन गीत। कार्यक्रम यादों की बारात, 7:13, आप जुड़े हुए संचिता के साथ।

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर यादों की बारात। 7:18 और 50 सेकंड हम बात कर रहे हैं फिल्म अजहर की, जिसने 10 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में और आज भी इस फिल्म के गीत कितने पॉपुलर हैं ये तो सुनकर ही पता चलता है ना। प्राची देसाई का एक बहुत ही सीरियस सा गंभीर किरदार उन्होंने निभाया फिल्म में। अजहरुद्दीन की पत्नी, पहली पत्नी नौरीन का किरदार निभाया और ये भूमिका भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि इसमें रिश्तों के टूटने, धोखे और मानसिक संघर्ष को दिखाया गया था। प्राची ने इस किरदार को निभाने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क किया, वास्तविक घटनाओं से जुड़े इंटरव्यूज और लेख पढ़े। उन्होंने अपने अभिनय को संयमित रखा ताकि किरदार अधिक वास्तविक लगे। उनके लुक और कॉस्ट्यूम को भी साधारण, बहुत ही साधारण रखा गया, जिसे 1990s के दशक की जो घरेलू भारतीय महिला की जो एक झलक है वो उनके चेहरे पर नजर आए। आलोचकों ने माना कि प्राची ने फिल्म में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं नरगिस फकरी की। नरगिस फकरी ने फिल्म में उस किरदार को निभाया जो अभिनेत्री संगीता बिजलानी से प्रेरित था। उनके लुक को 90s के दशक की बॉलीवुड ग्लैमर शैली के अनुरूप तैयार किया गया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने पुराने फैशन मैगजीन, फोटोशूट और फिल्मों का अध्ययन किया ताकि उस दौर का वास्तविक एहसास लाया जा सके। उनके हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़ों में भी उसी युग की एक झलक दिखाई देती है। और ये किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं था बल्कि कहानी में भावनात्मक एक कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी जोड़ता है। नरगिस ने अपने संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए उस समय की जो एक स्टार कल्चर, स्टार संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। निर्देशक टोनी डिसूजा खेल आधारित फिल्मों में बहुत रुचि रखते हैं और रखने के वजह से अजहर बनाते समय उनका उद्देश्य केवल क्रिकेट मैच दिखाना नहीं था बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के मानसिक संघर्ष, सामाजिक दबाव को भी दर्शाना था क्योंकि ये बायोपिक है। उन्होंने कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया कि दर्शक केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि इंसान अजहरुद्दीन को समझ सके। फिल्म में मीडिया ट्रायल, निजी रिश्ते, लोकप्रियता की कीमत जैसे पहलुओं को महत्व दिया गया। उनके निर्देशन पैटर्न जो है, जो डायरेक्शन का जो पैटर्न है वो भावनात्मक ड्रामा और यथार्थवादी, काफी रियलिस्टिक प्रस्तुति का संतुलन दिखाई देता है, जिसने फिल्म को साधारण स्पोर्ट्स फिल्म से बहुत अलग बनाया।
0: कार्यक्रम 107 एफएम रेनबो पर यादों की बारात। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा का वो गाना याद है अजहर फिल्म का, जिसे मनोज यादव ने लिखा और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। 7:22 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

7:27 अजहर फिल्म का ये गीत भी बेमिसाल था। और हम इसी फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं, कार्यक्रम है यादों की बारात। और यादों की बारात में इस फिल्म ने 10 साल पूरे कर लिए, क्योंकि 13 मई 2016 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। 7:27 और 46 सेकेंड आप जुड़े हुए संचिता के साथ। बात करते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म का सबसे चर्चित पहलू, जैसा कि मैं बता रही थी, 1990s के दशक के मैच फिक्सिंग विवाद को दिखाना था।

ये भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे संवेदनशील अध्याय माना जाता है। निर्माताओं ने इस हिस्से को प्रस्तुत करते समय कानूनी और तथ्यात्मक जो सावधानी बरती, कई घटनाओं को सीधे दिखाने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया ताकि विवाद न बढ़े। फिल्म में ये दिखाया गया कि कैसे एक खिलाड़ी अचानक मीडिया और जनता के निशाने पर आ सकता है। दर्शकों के लिए ये हिस्सा बेहद इंटरेस्टिंग, दिलचस्प था, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी मुख्यधारा बॉलीवुड फिल्म में क्रिकेट के इस विवादास्पद पक्ष को इतने विस्तार से देखा। फिल्म में कई प्रसिद्ध क्रिकेट मैचों को दोबारा शूट किया गया, जो कि बहुत मुश्किल था। इसके लिए स्टेडियम का माहौल वास्तविक बनाने की कोशिश की गई। कैमरा एंगल्स को इस तरह रखा गया कि दृश्य टीवी प्रसारण जैसे लगे। बैकग्राउंड में भीड़ की आवाज, केमिस्ट्री, जो स्टाइल और खिलाड़ियों की मूवमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया। क्रिकेट विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया ताकि जो टेक्निकल गलतियां जो होती हैं, गलतियां वो ना हो। इन दृश्यों को शूट करना आसान नहीं था, क्योंकि खिलाड़ियों की ऊर्जा और मैच का वो तनाव वास्तविक लगना बहुत जरूरी था। यही कारण है कि फिल्म के क्रिकेट सेंसेक्स और जो क्रिकेट सीक्वेंसेस हैं, दर्शकों को काफी प्रामाणिक लगे और उन्हें पुराने मैचों की एक याद सी आ जाए। जैसे कि गीतों में आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म के संगीत में कई संगीतकारों ने योगदान दिया, जिससे हर गाने का एक मूड जो है वो कुछ अलग बना। बॉलीवुड में ये ट्रेंड धीरे धीरे आगे चलकर लोकप्रिय भी हुआ और अजहर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बना। रोमांटिक गीत, भावनात्मक टैक्स जो ट्रैक्स थे, और फिर बैकग्राउंड स्कोर के लिए अलग अलग संगीत शैली अपनाई गई। इससे फिल्म के विभिन्न भावनात्मक चरणों को एक बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सका। संगीतकारों ने कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्स को, धुनों को इस तरह से तैयार किया कि आगे चलकर ये बिल्कुल एक एपिटोम बन गए। यही कारण था कि फिल्म का संगीत दर्शकों के बीच आज भी पॉपुलर है। रिलीज के पहले ही लोकप्रिय हो गए थे और रिलीज के इतने सालों बाद भी सुनकर रेडियो पर अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और अदिति सिंह शर्मा और अरमान मलिक की आवाज में, आनंद बख्शी, जी हाँ, एक पुराने गीत का रीमेक कह सकते हैं। और कल्याण जी, आनंद जी ने इसका संगीतबद्ध किया था, तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। फिल्म का नाम अजहर, 7:31:28। बिल्कुल एक पुराना गीत जिसे दोबारा बनाया गया और इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया।

0: जादू की बारात।
1: रेनबो पर यादों की बारात 7:35। बिल्कुल, और यादों की बारात में 10 साल पुराना ये फिल्म अजहर, जो कि एक बायोपिक है। इस फिल्म का एक गाना जिससे आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, बोल दो नाजरा, रिलीज के तुरंत बाद लोकप्रिय हो गया था, और इसकी मधुर धुन और भावनात्मक बोलों ने तो युवाओं के बीच एक खास जगह बना ली थी। इस गाने को फिल्म की रोमांटिक आत्मा माना गया, क्योंकि ये मुख्य किरदारों के रिश्ते की भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिल्म में दर्शा रहा था। संगीतकारों ने इसे सरल लेकिन दिल को छूने वाला बनाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने फिल्म देखने से पहले ही इसके जो ट्रैक्स हैं, जो गाने हैं, उन गानों को पसंद करना शुरू कर दिया था। इस गाने ने फिल्म के प्रमोशन में ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी इसे उतना ही पसंद किया जाता है। फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन में 1990s के दशक की जो फैशन शैली को दोबारा जीवंत किया गया। क्रिकेट जर्सी, सनग्लासेस, जैकेट्स, कैजुअल कपड़ों तक को उस समय के अनुसार तैयार किया गया। डिजाइन टीम ने पुराने मैच फुटेज और मैगजीन का रिसर्च किया, अध्ययन किया, ताकि हर किरदार जो है वो बहुत रियलिस्टिक लगे। खासकर जो मेन किरदार है मोहम्मद अजहरुद्दीन की स्टाइल उस समय युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थी, इसीलिए उसे सही तरीके से दिखाना बहुत जरूरी था। ये डिटेलिंग जो है फिल्म के विजुअल जो यथार्थवाद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और दर्शक

दशकों को सीधे 90s के दशक में, 90s के दशक के जो क्रिकेट माहौल में ले जाता है। फिल्म अजहर की शूटिंग भारत के अलावा कुछ विदेशी लोकेशंस पर की गई थी, जैसे कि ताकि क्रिकेट जो है वो टूर और अंतर्राष्ट्रीय माहौल को वास्तविक दिखाया जा सके। निर्माताओं ने होटल, स्टेडियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दृश्य के लिए बड़े जो है स्टेज और वास्तविक लोकेशंस का मिश्रण इस्तेमाल किया। इससे फिल्म का जो स्केल है वो तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शूटिंग के दौरान टीम को ये ध्यान में रखना था कि हर दृश्य 1990s के दशक की भावना को बनाए रखे। कैमरा वर्क और लोकेशन डिजाइन ने दर्शकों को उस दौर के क्रिकेट वातावरण का भी अनुभव कराया। यही कारण है कि फिल्म के कई जो सीन्स हैं, दृश्य है, वो बहुत ही विजुअली रिच और ऑथेंटिक लगने लगे। इसे फिल्म का एक और ट्रैक जिसे सोनू निगम और प्रकृति कक्कर ने गाया, कुमार ने लिखा और अमाल मलिक ने संगीतबद्ध किया। 7:39:23 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ।

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात। 7:45 और 30 सेकंड। इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं हूं आपके साथ संचिता, लेकर कुछ यादगार फिल्मों को। आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अजहर फिल्म से हमने शुरुआत की। अजहर ने 10 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में, क्योंकि 13 मई 2016 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इमरान हाशमी का एक अलग स्टाइल का अभिनय प्रयोग देखने को मिला इस फिल्म में। आमतौर पर रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों में ही वो जाने जाते थे इससे पहले, लेकिन अजहर उनके करियर का एक अलग प्रयोग माना गया। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक वास्तविक सार्वजनिक व्यक्तित्व निभाया। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे इंसान का किरदार निभाना जिसके बारे में दर्शकों को पहले से ही पता है और पहले से राय बनी हुई है। उन्होंने अभिनय में ओवर ड्रामेटिक शैली से बचते हुए संयमित प्रदर्शन किया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किरदार को कॉपी करने के बजाय उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, और यही किया। यही वजह रही कि उनका अभिनय कई जगहों पर बहुत माइन्यूट, सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली लगा। फिल्म में कई वास्तविक क्रिकेट घटनाओं और चर्चित नामों का संदर्भ दिया गया, जिससे कहानी अधिक जो है रियलिस्टिक लगी, विश्वसनीय लगी। हालांकि कानूनी कारणों से कुछ घटनाओं को बदला गया, लेकिन दर्शक आसानी से समझ सकते थे कि कौन सी घटनाएं वास्तविक इतिहास से प्रेरित है। फिल्म में मीडिया कवरेज, क्रिकेट बोर्ड का दबाव और सार्वजनिक आलोचना को भी उसी अंदाज में दिखाया गया जैसा उस समय महसूस किया गया था। यही यथार्थवाद फिल्म की सबसे बड़ी कह सकते हैं ताकतों में गिना गया। दर्शकों को लगा कि

बात कर रहे हैं हम फिल्म अजहर के बारे में। फिल्म में ये दिखाया गया कि कैसे मीडिया किसी खिलाड़ी की सार्वजनिक छवि को बदल सकती है। मैच फिक्सिंग विवाद के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन लगातार सुर्खियों में रहे थे। फिल्म में क्रिकेट दृश्यों को विश्वसनीय बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली गई। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की जो पोजीशन और मूवमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया। खासकर अजहरुद्दीन की इसके बारे में मैं पहले भी बता रही थी, रिस्ट जो शॉट्स होते थे और ग्रेसफुल बैटिंग स्टाइल होता था, उसको दोहराने के लिए अलग अभ्यास कराया गया। क्रिकेटर या क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें अधिक थी, इसलिए टीम ने छोटी छोटी तकनीक की गलतियों से बचने की कोशिश की। स्टेडियम में कैमरा प्लेसमेंट भी असली मैच प्रसारण जैसा रखा गया। यही वजह है कि फिल्म के कई क्रिकेट दृश्य दर्शकों को वास्तविक मैच की याद दिलाते हैं और उन्हें कहानी में पूरी तरह शामिल कर लेते हैं। बात कर रहे थे फिल्म अजहर के बारे में। फिलहाल हम सुनेंगे इसी फिल्म का आखिरी ट्रैक, केके की आवाज। कुमार ने लिखा और वही अमाल मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है यादों की बारात, 7:49।

0: जादू की बारात।
1: FM रेनबो पर यादों की बारात। अजहर उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने बॉलीवुड में खेल आधारित बायोपिक फिल्मों की लोकप्रियता को और बढ़ाया। इससे पहले खेल फिल्मों की संख्या सीमित थी, लेकिन इस फिल्म के बाद खिलाड़ियों की जिंदगी पर आधारित फिल्मों में दर्शकों की रुचि बढ़ी। निर्माताओं ने महसूस किया कि दर्शक केवल जीत की कहानियां नहीं बल्कि संघर्ष, विवाद और निजी जीवन की जटिलताओं को भी देखना चाहते हैं। अजहर ने यह साबित किया, क्रिकेट जैसी लोकप्रिय खेल से जुड़ी कहानी बड़े स्तर पर दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। इसके बाद कई फिल्में बनी MS धोनी पर और कई खिलाड़ियों पर। कार्यक्रम है यादों की बारात और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही फिल्मों की बारे में। आगे बढ़ते हैं। 19 मई 1993 को एक फिल्म रिलीज हुई थी। जी हां, इसी महीने 33 साल हो गए इस फिल्म को। आमिर खान ने कहानी लेखन में की योगदान। फिल्म हम है राही प्यार के कि सबसे रोचक बात यह है कि इसने कहानी लेखन में आमिर खान का भी महत्वपूर्ण योगदान था। आमिर केवल अभिनेता नहीं थे बल्कि उन्होंने स्क्रिप्ट पर किरदारों के विकास पर भी काम किया। उस समय बहुत कम अभिनेता फिल्मों के रचनात्मक पक्ष में इतनी गहराई से शामिल होते हैं, उस वक्त आमिर ने किया। खासकर बच्चों के साथ जुड़ी कॉमिक परिस्थितियों और राहुल के किरदार को अधिक मानवीय बनाने में सुझाव दिए। फिल्म की पारिवारिक गर्माहट और हल्का हास्य उसी रचनात्मक सहयोग का परिणाम माना जाता है। हम याद कर रहे हैं आज यादों की बारात में हम है राही प्यार के। इसी फिल्म का एक गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। कार्यक्रम जिसके साथ थे आप, यादों की बारात। 8:02 पर वापस हम लेकर आएंगे इसी कार्यक्रम को। तब तक रूबरू होते हैं इस गीत के साथ और खबरों की दुनिया के साथ।

0: जादू की बारात।
1: आठ बजकर 3 मिनट 107 FM रेनबो पर यादों की बारात। वापस आते हैं इसी कार्यक्रम में, और जैसा कि मैं बता रही थी कि बिकॉज ऑफ अजहर के वजह से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो स्पोर्ट्स पर बननी शुरू हुई, जैसे हॉकी पर चक दे इंडिया स्टम्प्ड बनी, फिर से सलाम इंडिया से शुरू करके तोरबाज, लाल सलाम, डिशूम, विक्ट्री, यहाँ तक कि जर्सी बनी, फिर MS धोनी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मिस्टर एंड मिसेस माही, और फिर शाबाश मिट्टू, पटियाला हाउस, इकबाल, जैसी कायपोचे, बहुत सारी फिल्में बनी। तो चलिए जाते जाते नहीं बल्कि आते आते, क्योंकि हम अभी भी इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम है यादों की बारात। अरमान मलिक की ही आवाज़ में एक गीत जो बहुत पसंद करते हैं आप सब, मुझे भी बहुत पसंद है। मनोज मुंतशिर ने लिखा, अमल मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया, और अरमान मलिक की है आवाज़। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से इस गीत को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उस कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है यादों की बारात।

बेसब्रियां जाए वहां जो ले जाए वहां। जी हाँ, रास्ते फिक्स नहीं होते, वहीं चले जाते हैं जहां हम चलते रहते हैं और फिर आखिर में उस मुकाम तक पहुंचे जाते हैं, यादों की बारात। और इस सफर में, यादों के सफर में हम आगे निकल आए हैं और अब बात करेंगे एक और फिल्म की। ये फिल्म जो है 33 साल नहीं, हम है राही प्यार के, जो कि मई के महीने में ही रिलीज हुई थी, 19 मई, लेकिन आगे निकल आए हैं थोड़ा और। 2006 की बात करते, 2006 में इसी महीने 26 मई को रिलीज हुई थी एक फिल्म। बात आमिर खान की हो रही थी तो चलिए उन्हीं की फिल्म लेते हैं। 2006 में रिलीज हुई फिल्म, उर्दू में इस फिल्म का जो शीर्षक है उससे उसका जो एक सूफी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं, यानी खुद को मिटा देना प्यार में। निर्देशक कुणाल कोहली ने इस शब्द को केवल रोमांस नहीं बल्कि त्याग, दर्द, विनाश के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। फिल्म में रेहान और जूनी का प्रेम भी ऐसा ही दिखाया गया, जहां प्यार और कर्तव्य की लड़ाई अंततः विनाश में बदल जाती है। यही वजह है कि फिल्म का नाम कहानी की आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कौन सी फिल्म? वही फना। सोनू निगम, सुनिधि चौहान और आमिर खान की आवाज। प्रशंसा जोशी ने लिखा, जतिन ललित ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है यादों की बारात। 8:11 आप जुड़े हुए संचिता के साथ।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: यादों की बारात।
2: FM रेनबो पर यादों की बारात, 8:16। जी हाँ, 20 साल पूरे कर लिए इस फिल्म ने। फना आमिर खान शुरू में पहली पसंद नहीं थे इस फिल्म के। कम लोग जानते हैं कि निर्माता आदित्य चोपड़ा शुरुआत में रेहान के किरदार के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। निर्देशक कुणाल कोहली ने बाद में खुलासा किया कि आदित्य को लगता था कि आमिर खान बहुत समय लेते हैं और शायद प्रोजेक्ट लंबा खिंच सकता है, लेकिन कुणाल को भरोसा था कि जटिल और रोमांटिक दोनों पहलुओं वाला किरदार आमिर ही निभा सकते हैं। आखिरकार आमिर को चुना गया और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। ये भी खास है कि ये यशराज बैनर के साथ आमिर की पहली बड़ी सफल फिल्मों में एक थी। अब बात करते हैं काजोल की। काजोल की 5 साल बाद एक धमाकेदार वापसी हुई फना के जरिए। काजोल की कमबैक फिल्म माना जाता है इसे, शादी और मातृत्व के बाद। काजोल ने लगभग 5 वर्षों तक फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने पूर्ण रूप से, पूरी तरह से वापसी के लिए इसी फिल्म को चुना। दिलचस्प ये है कि उसी समय उन्हें दूसरी बड़ी फिल्म भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी फना को चुना। इसलिए चुनी क्योंकि जूनी का किरदार भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत और अलग था। दर्शकों और समीक्षकों

ना था कि काजोल स्क्रीन पर बहुत नेचुरल है, सहज है, सहज अभिनय और गहराई ला सकती है। आखिरकार यही निर्णय फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुआ और आमिर काजोल की ये जोड़ी इससे पहले दोनों जरूर दिखे। लव लव लव में तो जूही चावला के साथ आमिर थे, लेकिन ये जोड़ी को खूब सराहना मिली। फिल्म की कहानी कश्मीर से जुड़ी थी, लेकिन इसकी कई बर्फीली लोकेशंस वास्तव में भारत में नहीं शूट की गई। सुरक्षा कारणों से टीम ने असली कश्मीर में शूटिंग का फैसला बदल दिया और फिर पोलैंड के बर्फीले इलाकों में शूट किया गया, क्योंकि वहां का दृश्य कश्मीर जैसा ही लगता है। दर्शकों को आज भी लगता है कि पूरी फिल्म जो है पूरी तरह से कश्मीर में शूट हुई, लेकिन ये फिल्म निर्माण की शानदार योजना थी कि जिसने लोकेशंस का भ्रम पूरी तरह से सफल बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और फना कर देने वाली ट्रैक, और ये ट्रैक है, इस गीत को गाया है शान और कैलाश खेर ने, प्रशुन जोशी का लिखा हुआ गीत जिसे जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया, और कौन सा ट्रैक, चांद सिफारिश, कार्यक्रम यादों की बारात, 8:20।

0: जादू की बारात।
1: यादों की बारात में जुड़े हुए आप हर रविवार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। फिलहाल 8:25 और 2 सेकंड 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात में आपके साथ हूं मैं संचिता। बात कर रहे हैं 20 साल पुरानी एक फिल्म की, फना। 26 मई 2006 को रिलीज हुई थी। निर्देशक कुणाल कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट आमिर और काजोल को भेजी थी तो दोनों ने अपने अपने सुझाव जो है रिव्यूज वापस भेजे। मजेदार बात ये रही कि दोनों कलाकार अपने किरदारों को और गहराई देना चाहते थे। आमिर अपने चरित्र रेहान के मनोविज्ञान को मजबूत बनाना चाहते थे, जबकि काजोल जूनी को ज्यादा प्रभावशाली देखना चाहती थी। इससे कहानी और पात्रों को अधिक भावनात्मक पड़ते मिली। हालांकि आमिर खान और काजोल पहले फिल्म इश्क में काम कर चुके थे, साथ दिख चुके थे, लेकिन वहां उनका रोमांटिक ट्रैक मुख्य नहीं था। फना पहली फिल्म बनी जिसमें दोनों को पूरी तरह से रोमांटिक जोड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया। दर्शकों ने उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया, खासकर चांद सिफारिश जिस गीत को अभी अभी आप सुन रहे थे, और फिर इसके पहले मेरे हाथ में जैसे गीतों में। आज भी कई प्रशंसक इस जोड़ी को बॉलीवुड की अंडररेटेड रोमांटिक पेयर मानते हैं। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी जतिन ललित यानी जतिन पंडित और ललित पंडित ने दिया था। कम लोग जानते हैं कि फना उनकी साथ में बनी आखिरी फिल्म थी। जी हाँ, जतिन और ललित की एक साथ जो संगीतकार जोड़ी है, फना उनकी आखिरी फिल्म थी। और इसके बाद दोनों की जोड़ी अलग हो गई। चांद सिफारिश मेरे हाथ में और देखो ना जैसे गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है। संगीत एल्बम उस वर्ष की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बमों में शामिल हो गई। फिल्म के कुछ गीतों में केवल प्लेबैक सिंगर्स ही नहीं बल्कि आमिर और काजोल की आवाज में बोले गए जो काव्यात्मक जो संवाद भी शामिल किए गए थे। और खासकर मेरे हाथ में जो गीत है उसमें और फिर चंदा चमके में दोनों कलाकारों ने कविता जैसी लाइनें रिकॉर्ड की जिससे गानों में भावनात्मक जो एक डेप्थ है वो नजर आया। ये प्रयोग उस दौर की बॉलीवुड फिल्मों में कम देखने को मिलता था। फिल्म के पहले हिस्से में दिखाई गई जो दिल्ली केवल सेट नहीं थी, शूटिंग वास्तव में की गई ऐतिहासिक जगहों पर जिनमें आपने देखा होगा अगर आपने फिल्म देखी है, लाल किला, जंतर मंतर और कुतुब मीनार, पुराना किला, यहाँ तक कि लोदी गार्डन में भी कुछ हिस्सों की शूटिंग की गई। इससे फिल्म को बहुत रियलिस्टिक वास्तविकता और पर्यटन जैसा एहसास मिला।

खान का गाइड वाला वो जो किरदार इन स्थानों के जरिए और भी जीवंत हो गया। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ, वही प्रशन जोशी ने लिखा और जतिन ललित संगीतकार जोड़ी ने इसे बनाया। महालक्ष्मी अय्यर, मास्टर अक्ष और बाबुल सुप्रियो की आवाज, फिल्म का नाम फना, कार्यक्रम यादों की बारात। 8:29 आप जुड़े हुए हैं संजय।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर यादों की बारात। चलिए बात करते हैं फिर से फना के बारे में।

और ये फना जो 20 साल पुरानी ये फिल्म है, रेहान के किरदार के लिए आमिर खान ने लुक पर विशेष मेहनत की। आमिर खान को तो सब जानते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आमिर खान अपने किरदारों की बारीक तैयारी के लिए जाने जाते हैं और फना में भी उन्होंने यही किया। रेहान एक आकर्षक टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ एक रहस्यमय आतंकवादी भी था, इसलिए आमिर चाहते थे कि उनका ये जो डुअल पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, दोनों पहलुओं को दर्शाया जाए। उन्होंने अपने हेयर स्टाइल, दाढ़ी, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज पर अलग से काम किया। पहले हिस्से में उनका अंदाज चुलबुला रोमांटिक रहा, जबकि दूसरे हिस्से में उनका व्यवहार गंभीर और रहस्यमय जैसा दिखाया गया। ये परिवर्तन दर्शकों को किरदार के दो चेहरे महसूस कराने के लिए जानबूझकर रखा गया था। कार्यक्रम यादों की बारात में हम बात कर रहे हैं फिल्म फना के बारे में, जिसने 20 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। फिल्म की कहानी पर हॉलीवुड फिल्म से प्रेरणा की चर्चा हुई थी उन दिनों। रिलीज के समय कुछ दर्शकों और समीक्षकों ने माना कि यह फना की कुछ जो थीम्स है, 1965 की हॉलीवुड फिल्म आई ऑफ द डेविल और कुछ रोमांटिक थ्रिलर कथाओं से प्रेरित लगती है। हालांकि निर्देशक कुणाल कोहली और यशराज फिल्म्स ने इसे आधिकारिक रूप से मौलिक प्रेम कहानी बताया। फिल्म का मूल संघर्ष प्रेम बनाम राष्ट्रभक्ति भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जिसने इसे अलग पहचान दी। ये बहस आज भी फिल्म लवर्स के बीच चर्चा का विषय रहती है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर किसी कॉपी का दावा सिद्ध नहीं हुआ है। फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीतों में से जो अभी अभी आप सुन रहे थे, चांद चंदा चमके, चांद सिफारिश, को गीतकार ने पारंपरिक उर्दू रोमांटिक कविता की शैली से प्रेरित होकर लिखा था। चांद को प्रेम का संवेदन बाहक दिखाने की कल्पना पुराने शायराना साहित्य से जुड़ी मानी जाती है। संगीतकार जोड़ी ने धुन को आधुनिक रखते हुए भी सूफियाना और शास्त्रीय एक टच रखा। यही कारण है कि ये गीत रिलीज के वर्षों बाद भी शादी और रोमांटिक प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बना हुआ है। जूनी एक दृष्टिहीन युवती का किरदार निभाती है। काजोल ने नेत्रहीन लड़की की भूमिका के लिए एक तैयारी की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने विजुअली इंपायर्ड जो लोग हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की, चेहरे के भाव और चलने फिरने फिरने के जो तरीके होते हैं उसे ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि आंखों की हरकत सामान्य व्यक्ति जैसी ना लगे। समीक्षकों ने विशेष रूप से इस बात की प्रशंसा की कि उनका अभिनय बिल्कुल बनावटी नहीं लगा और किरदार में संवेदनशीलता दिखाई दी। यही भूमिका उनके करियर की यादगार परफॉर्मेंसेस में से एक गिनी जाती है। हम बात कर रहे हैं जूनी के किरदार की और फना फिल्म में उनका जो किरदार है बहुत ही दमदार रहा। आगे बात करेंगे इस कहानी से जुड़े और भी जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और जो गीतों और बातों से है भरा हुआ ये कार्यक्रम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रशन जोशी ने लिखा, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात।

0: जादू की बारात।
1: सेवन एफ एम रेनबो पर यादों की बारात, 8:43 और 55 सेकंड। बात कर रहे हैं फिल्म फना के बारे में। रिलीज के समय फना विवादों में भी आई थी। आमिर खान ने एक सामाजिक मुद्दे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात के कुछ सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर विरोध हुआ और इसके बावजूद फिल्म ने भारत और विदेशों में मजबूत कमाई की। दिलचस्प बात यह है कि विवाद के कारण फिल्म की चर्चा और भी बढ़ गई, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उस वर्ष की बड़ी सफल फिल्मों में से एक बनी। कम लोग जानते हैं कि फना का जो अंत तय करने में काफी चर्चा हुई थी। फिल्म प्रेम कहानी थी, लेकिन निर्देशक और लेखकों के सामने सवाल था कि क्या कहानी को पूरी तरह हैप्पी यानी कि सुखद अंत दिया जाए। अंततः ऐसा क्लाइमेक्स चुना गया जिसमें प्रेम और कर्तव्य दोनों की कीमत दिखाई गई। जूनी का अंतिम निर्णय फिल्म को सामान्य बॉलीवुड प्रेम कहानी से अलग बनाया है या बनाता है। इसी इमोशनल एंडिंग की वजह से फिल्म लंबे समय तक दर्शकों के मन में बनी रही। फिल्म के संवादों में शायरी का प्रयोग किया गया जानबूझकर। रेहान का किरदार केवल रोमांटिक हीरो नहीं था, वो शायराना अंदाज में बात करने वाला व्यक्ति भी था। इसलिए स्क्रिप्ट में जानबूझकर उर्दू शायरी और पोएटिक डायलॉग्स जोड़े गए। आमिर खान ने इन संवादों की डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया ताकि वे बनावटी ना लगे। हमसे दूर जाओगे कैसे जैसे जो संवाद रखे गए दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। फिल्म के रोमांटिक माहौल को मजबूत बनाने में इन जो पंच लाइन्स है, पोएटिक लाइन्स है, बड़ी भूमिका निभाती है। फिल्म के दूसरे भाग में दिखाई देने वाला बच्चा केवल सहायक किरदार नहीं था। लेखक चाहते थे कि वह रेहान और जूनी के टूटे रिश्ते को जोड़ने वाली भावनात्मक कड़ी बने। इसलिए बच्चे के दृश्य को काफी संवेदनशील तरीके से लिखा गया। कई समीक्षकों ने कहा कि फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट दूसरे हिस्से में इसी रिश्ते के कारण और मजबूत हुआ। ये पहलू अक्सर चर्चे में कम आता है, लेकिन कहानी की रीढ़ माना जाता है। फना उस समय से सबसे महंगी रोमांटिक फिल्मों में गिनी गई। यशराज फिल्म्स ने फना के निर्माण में बड़े स्तर पर निवेश किया। विदेशी लोकेशंस, विस्तृत सेट, बड़े स्टार कास्ट, उच्च प्रोडक्शन वैल्यूज के कारण ये उस दौर की महंगी रोमांटिक फिल्मों में मानी गई। खासकर बर्फीले दृश्य और संगीत की फिल्मिंग पर विशेष खर्च किया गया। फिल्म एक बहुत ही विजुअली रिच दिखने वाला फिल्म बना। इसके लिए सिनेमेटोग्राफी पर भी काफी ध्यान दिया गया। आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। सोनू निगम और सुनिधि चौहान, प्रशंसक जोशी ने लिखा, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। फिल्म वही फना, कार्यक्रम यादों की बारात। 8:48 और 5 सेकंड आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ।

फना ने रोमांटिक थ्रिलर शैली को एक नया ट्रेंड दिया। 2000 के दशक में ज्यादातर रोमांटिक फिल्में हल्की फुल्की या पारिवारिक हुआ करती थी, लेकिन फना ने रोमांस को थ्रिलर और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जोड़ा। प्रेम कहानी के भीतर राष्ट्रवाद, रहस्य और नैतिक संघर्ष जोड़ना उस समय थोड़ा अलग प्रयोग माना गया। बाद में कई फिल्मों ने इसी तरह रोमांस सस्पेंस का मिश्रण अपनाया। यही कारण है कि फना को केवल रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल मेनस्ट्रीम सिनेमा

बात कर रहे थे फना के बारे में। इसी महीने रिलीज हुई एक और फिल्म रेड 2। रेड की सफलता के बाद निर्माताओं ने इसके सीक्वल पर काम शुरू किया। पहली फिल्म एक वास्तविक आयकर छापे से प्रेरित थी और इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसकी मजबूत कहानी, यथार्थवाद ट्रीटमेंट और अजय देवगन के गंभीर अभिनय ने इसे अलग पहचान दी। इसी सफलता के आधार पर रेड 2 को विकसित किया गया ताकि उसी किरदार को नए केस और नई चुनौती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। बॉलीवुड में सफल कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के सीक्वल बनाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है रेड 2। रेड 2 में अजय देवगन का निभाया गया आयकर अधिकारी अमय पटनायक फिर से मुख्य भूमिका में है। ये किरदार अपनी ईमानदारी और सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। पहली फिल्म से इसे काफी सराहना मिली, इसलिए सीक्वल में भी उसी गंभीर और सहमित व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोशिश की गई। इस तरह के किरदार को निरंतरता देना फिल्म की पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन किया था, सीक्वल से भी जुड़े हैं। उनकी जो शैली है यथार्थवादी और रिसर्च आधारित मानी जाती है। आमतौर पर सच्ची घटनाओं या उसके करीब की कहानियों को सिनेमाई रूप देते हैं राजकुमार गुप्ता। इसलिए रेड 2 में भी दर्शकों को एक प्रमाणित और गंभीर टोन की उम्मीद थी। सीक्वल में कहानी पहली फिल्म की निरंतरता नहीं रही, बल्कि एक नए केस पर आधारित है। आयकर विभाग के छापों की दुनिया में कई अनकही कहानियां होती है और फिल्म इन्हीं में से एक नई घटना को सामने लाने की कोशिश करती है। मई के महीने में रिलीज हुई थी फिल्म रेड 2। परंपरा टंडन, साचेत टंडन की आवाज कौसर मुनि ने लिखा, साचेत परंपरा ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी फिल्म से दो ट्रैक्स, एक जुबीन नौटियाल की आवाज और दूसरा परंपरा और साचेत की आवाज में सुनते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सफर पर जिसका नाम है यादों की बारात।